उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ओ तो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A15 Rotterdam-Europoort door de problemen bij de Zuurhofbrug. 6 kilometer file, de rijbaan is dicht en verkeer gaat er via de vluchtstrook langs. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujana Radio. वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर उन्होंने बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेयर इन्फॉर्मेशन ऑफ उजाला.net उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारी ओर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर मार हंड्रेड यूरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नार info@ujala.net info@ujala.net।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा।

ये उजाला रेडियो है। अब यहाँ से हम अपना हफ्तावार प्रोग्राम सब रंग आगाज करते हैं। हरे सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं हूँ आपका हमसफर निशा। गाने जो हमने आज सुनवाएंगे इसमें ज़रूर आपकी पसंद भी होगी। आप नहीं होते तो स्वरों की महफिल कैसे सजते। तो आइए शुरू करती हूँ प्रोग्राम सबरंग से। किसी भी शख्स का दूसरा चेहरा तलाश करने की कोशिश ना करो। तुम्हारे लिए यही काफ़ी है कि उसने तुम्हारा एहतराम किया और अपना बेहतर चेहरा तुम्हारे सामने पेश किया। शुरू करते हैं ये बयान से, दर्ज है अल्लाह की नेक बंदे नेकी का बीज बोले।

अल्लाह के नेक बंदे मोहम्मद रफी साहब से पेश था ये बयान। अब आइए सूरदास भजन सुनवाते हैं। हेमंत शुक्ला जी की आवाज में तर्स है, अखिया हरी दर्शन की प्यासी।

अखिया हरि दर्शन की प्यासी, गायिका हेमंत शुक्ला की आवाज में पेश था सुरदास भजन। प्रोग्राम की शुरुआत में हमने आपको मजहबी और भक्ति संगीत सुनवाए। अब हम आपके खिदमत में गजलें पेश करेंगे, उम्मीद है आप इसे लुत्फ उठाएंगे। अंधेरी रात में उम्मीद का उजाला लाई हूँ, वो अपने साथ मोहब्बत का एक प्याला लाए है। बुझा हुआ था जो मुद्दत से दिल का अंदर मेरा, वो चिराग़े इश्क से जलाने आई है।

शायराना अंदाज में पेश थी ये गजल, कलाम फैज रतनामी का, आवाज थी श्री जगजीत सिंह की और खुद उन्हीं की मौसिकी थी। सबके दिल में रहता हूँ, सबके दिल में रहता हूँ, ये हुनर भी खूब है, पर मेरी तन्हाई का आलम भी तो महबूब है। यूं तो हंसते खेलते गुजरती है जिंदगी, पर तेरे बिना मेरे दिल का आंगन खाली है।

शहंशाह गजल नवाज उस्ताद मेहदी हसन से पेश थी ये गजल। तेरे नजर का जादू, तेरे नजर का जादू रूह में समा गया। तेरे पास आते ही मेरा हर खौफ मिट जाता है। मिट जाते हैं फासले जब नजरें मिलती है। तू मिल गया तो जीने का एहसास अब हुआ है।

रूहानियत अंदाज में पेश थी ये गज़ल अलका याग्निक की आवाज़ थी, मौसिकी अनु मल्लिक की, कलाम शायर जावेद अख्तर का था। दुख सुख था एक सबका, चाहे अपना हो या बेगाना, हमें तो बस हर दिल में मोहब्बत का दीप जलाना है।

जी हाँ, वो भी था एक जमाना। पंकज उधास की आवाज में पेश था ये गाना और महान शायर जफर गोरखपुरी का कलाम था। महफिल की रौनकें थी, महफिल की रौनकें थी जिनके दम से वो अपना रुख बदल कर चले गए। हमें अंधेरों के हवाले करके वो शमा बुझा कर चले गए।

अनमोल गीत पेश था लता जी की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण का लिखा तर्स था और हुस्नलाल भगत राम का सजाया संगीत। अगला दो गाना पेश है, गाने वाले हैं मोहम्मद रफी साहब और गीता दत्त जी।

सदाबहार गाना पेश था, संगीत देने वाले थे शंकर जयकिशन, बोल था शायर शैलेंद्र का। अब सुनवाते हैं यसुदास की मीठी सुर में ये गीत।

खूबसूरत अंदाज में आपने अभी यीशु दास से ये गीत सुना। अब आइए सुने मुकेश और आशा भोसले की आवाजों में ये दो गाना।

फिल्म फिर सुबह होगी का जुगल गीत पेश था और ये दो गाना राज कपूर और माला सिन्हा पर फिल्माया गया था। संगीत से सवारे थे खयाम, गीतकार था साहिर लुधियानवी। फूल देखा तो तेरी आंख का जादू याद आया, हवा चली तो वही लम्हा फिर ख्यालों में उतरा। गुलाब के चराग से महक उठा है जहाँ, देखा है तुम्हें जिधर जिधर, महके है फूल उधर उधर।

आप सभी सुनने वालों को फिल्मी दुनिया में एक बार फिर एहतराम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अब यहाँ से हम अपना हफ्तावार प्रोग्राम फिल्मी दुनिया शुरू करते हैं। तो आइए प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में ये गीत।

सुमन कल्याणपुर की आवाज में आपने अभी ये नगमा सुना, जिसके बारे में हम आज बातें आगे बढ़ाएंगे। पिछले प्रोग्राम में बतलाई थी कि तलत महमूद ने जब सुमन कल्याणपुर को एक कॉन्सर्ट में गाते हुए सुना तो उनकी आवाज से मुतासिर हुए। मगर इसके बाद क्या हुआ? तलत महमूद ने बिना वक्त जाया किए सुमन के बेमिसाल टैलेंट को पहचाना और उन्हें उस वक्त की सबसे बड़ी रिकॉर्ड कंपनी HiMFI से मिलवाया। शुरू में कंपनी के लोगों को लगा कि सुमन की आवाज में थोड़ा सा कच्चापन है, लेकिन तलत महमूद ने हार नहीं मानी। उन्हीं की कोशिशों से नेहतीन फैतह में फिल्म दरवाजा के लिए सुमन का सबसे पहला डुएट रिकॉर्ड हुआ और ये गाना उन्होंने खुद तलत महमूद के साथ गाया था। उसके बोल है, एक दिल दो है तलबगार। जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में बतलाई थी, सुमन जी की सिर्फ एक अच्छी सिंगर ही नहीं थी, वो मुंबई के मशहूर सर जी जी स्कूल ऑफ आर्ट से पेंटिंग भी सीख रही थी, लेकिन मौसिकी अब उनकी किस्मत बन चुका था। साल नेकतीन अख्तम फैतख में उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उन्होंने मुंबई के एक बड़े बिजनेसमैन रामानंद कल्याणपुर से शादी कर ली। रामानंद साहेब सुमन के सबसे बड़े फैन और सपोर्टर थी, क्योंकि सुमन जी को कॉन्ट्रैक्ट और पैसे के मामले में होशियार नहीं थी, इसलिए उनके शौहर हर रिकॉर्डिंग पर अपने बीवी के साथ जाते थे और उनका करियर संभालते थे। आइए सुने फिल्म बदतमी से ये गीत।

अभी आपने फिल्म बदतमीज में से ये गीत सुना। इसके गीतकार था हसरत जयपुरी, संगीत था शंकर जयकिशन। आप सुन रहे हैं सुमन कल्याणपुर जी की संगीत सफर। सुमन जी के संगीत सफर में एक ऐसी चीज थी जो उनके लिए वरदान मतलब ब्लेसिंग भी थी और श्राप भी। उनके आवाज का सुर और टेक्सचर बिल्कुल महान गायिका लता मंगेशकर जैसा था। उस दौर में रेडियो सेलोन पर जब गाना चलते थे तो सिंगर के नाम नहीं बतलाए जाते थे, तो लोग अक्सर धोखा खा जाते थे और सुमन जी के गानों को लता का समझ लेते थे। यहाँ तक कि कई बार ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स पर गलती से लता मंगेशकर का नाम लिखा जाता था, लेकिन सुमन जी ने कभी इस बात का बुरा नहीं माना। उन्होंने हमेशा लता जी की इज्जत की और फिर आया नेहती शस्तक का गोल्डन एरा, जब बॉलीवुड में एक बड़ा हंगामा हुआ। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहेब के दरमियान गाने की रॉयल्टी को लेकर अनबन हो गई और दोनों ने साथ गाने से इनकार कर दिया। उस वक्त हर म्यूजिक डायरेक्टर परेशान था कि रफ़ी साहेब की ऊंची और सुरीली आवाज़ के साथ कौन जोड़ी बनेगा। तब सबको याद आई वो थी सुमन कल्याणपुर। फिर क्या हुआ? जी हाँ, उन्होंने उस दौरान रफ़ी साहेब के साथ एक के बाद एक 100 फेर तक से ज़्यादा खूबसूरत डुएट गाए। अब हम आपको उन्हीं गानों में से एक गाना सुनवाते हैं जो आज भी लोग इतने ही शौक से सुनते हैं और लुत्फ उठाते हैं। तो लीजिए आप भी सुमन जी और रफ़ी साहेब के ये डुएट को शौक से सुनें।

क्या बात है, इस गाना को सुनकर आपको झूमने का मन करता तो होगा, है ना? सुमन जी ने सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि मराठी, बंगाली, गुजराती समेत 10 से ज़्यादा जुबानों में गाना गाए हैं। वो हमेशा बॉलीवुड की चमक धमक और पार्टी से दूर रहती थी। उन्हें घर पर रहना, अपने बागीचे में काम करती थी और पेंटिंग करना पसंद था। सुमन जी और लता जी की कहानी संगीत की दुनिया की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है। उन दोनों की आवाज़ इस कदर मिलती जुलती थी कि लोग अक्सर फर्क नहीं कर पाते थे। उनके दरमियान रिश्ता हमेशा इज्जत का रहा, लेकिन फिल्मी दुनिया की सियासत पॉलिटिक्स की वजह से दोनों के बीच एक अनदेखा मुकाबला ज़रूर था। उस दौर में लता जी का बॉलीवुड पर कब्जा मोनोपोली था। बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर्स सुमन जी को रिजर्व लता के तौर पर देखते थे। जब लता जी के पास वक्त नहीं होता था या उनकी डिमांड ज़्यादा होती थी तो सुमन जी को बुलाया जाता था। इस वजह से सुमन जी को वो मकबूलियत और वो क्रेडिट नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। सुमन कल्याणपुर की करियर का सबसे सुनहरा दौर तब शुरू हुआ जब लता मंगेशकर और रफ़ी के दरमियान रॉयल्टी के मसले पर अनबन हुआ और ये सुमन जी के लिए एक नियमित फ़ायदा साबित हुई। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ कई मशहूर डुएट्स गाए, जैसे कि आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर। ये डुएट, जैसे मैंने कहा, आवाम इसे बहुत पसंद किया, पर आइए सुने इन दोनों के ये दो गाना मोहब्बत भरी अंदाज में।

मोहब्बत भरी अंदाज में आपने अभी सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी साहिब से ये दो गाना सुना। जब कुछ सालों बाद लता जी और रफ़ी साहिब से सुलह हो गई तो सुमन जी को मिलने वाले गाने फिर से कम हो गए। सुमन जी हमेशा लता जी को बहुत इज्जत करती थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में मजाक में कहा कि शायद हम दोनों खुदा से आवाज़ मांगने के लिए एक ही लाइन में खड़े थे और उन्होंने हमें आधी आधी आवाज़ दे दी। बस फ़र्क ये था कि लता जी दुनिया में पहले आ गई। सुमन ने हमेशा कहा कि वो कभी लता मंगेशकर की नकल नहीं की, उनकी आवाज़ कुदरती तौर पर ऐसे ही थी। सुमन जी और लता जी ने अपने पूरे संगीत सफर में सिर्फ एक डुएट साथ गाया था जिसका नाम था कभी आज कभी कल। फिल्म थी चांद जो नेहती नेखना फैक्टर में रिलीज हुआ था। पर प्रोग्राम आगे बढ़ाने से पहले आइए सुने सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में ये गीत।

फिल्म मुनीम जी में से ये गीत लिया है। गाने वाले थी सुमन कल्याणपुर, जिसके बारे में हम बातें कर रही है। अब हम आपको एक दिलचस्प कहानी बतलाएंगे सुमन जी और लता जी के बारे में। ये सुमन कल्याणपुर की जिंदगी का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला और जरा दुख भरा किस्सा है। उस वक्त क्या हुआ था हम आपको विस्तार में बतलाएंगे। नेखंतीन त्वीय शस्तक की भारत चीना की जंग के बाद मशहूर शायर कवि प्रदीप ने ये गाना शहीद जवानों के याद में लिखा था। उस दौर में म्यूजिक डायरेक्टर से रामचंद्र और लता मंगेशकर के दरमियान किसी बात पर अनबन थी, इसलिए से रामचंद्र ने सुमन कल्याणपुर को इस गाने के लिए चुना था। सुमन जी ने इस गाने की पूरी तैयारी की और बहुत दिनों तक रिहर्सल भी की थी। सुमन जी ने न्यू दिल्ली में होने वाले बड़े नेशनल इवेंट पर इस गाने को स्टेज पर लाइव गाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। फिर ऐसे क्या हुआ, क्यों हुआ, बातें आगे बढ़ाते हैं। ये इवेंट 26 जनवरी 1963 को न्यू दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में था, जहां प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे और सुमन जी भी स्टेजों में मौजूद थी और पोडियम पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। लेकिन अचानक बैकस्टेज इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स शुरू हो गई। कुछ अहम लोगों का कहना था कि इतनी बड़े और कौमी नेशनल लेवल के गाने को देश की नंबर वन गायिका को ही गाना चाहिए, तो आखिरी लम्हात लास्ट मिनट में लता मंगेशकर को राजी किया गाने को। सुमन जी पोडियम पर जाने वाली थी तब उसे पता चला कि अब वो ये गाना नहीं गाएंगी, बल्कि उनकी जगह लता मंगेशकर स्टेज पर जाकर ये गाना गाएंगी। पर लता मंगेशकर ने स्टेज पर जाकर ये गाना इस कदर दर्द और खूबसूरती से गाई थी, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गया। सुमन कल्याणपुर के लिए ये बहुत बड़ा इमोशन का झटका था, क्योंकि उनके हाथ से एक ऐसा मौका निकल गया जो उन्हें हमेशा के लिए अमर इमॉर्टल कर दिया। बातें आगे बढ़ाने से पहले हम आपको वो अमर गीत सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में।

जी हाँ, ये लता जी की आवाज़ है, लेकिन ये अमर गीत पहले सुमन कल्याणपुर को दिया गया था गाने के लिए। इस हादसे के बाद सुमन कल्याणपुर और से रामचंद्र के दरमियान प्रोफेशनली थोड़ी दूरी आ गई थी, लेकिन उन्होंने एक दूसरे की इज्जत करना कभी नहीं छोड़ा। संगीतकार से रामचंद्र ने कहा कि वो समझते थे कि सुमन जी के साथ ना इंसाफी हुई थी, लेकिन इंडस्ट्री के दबाव के आगे वो भी मजबूर थे। फिर भी उन्होंने बाद में कुछ फिल्मों में साथ काम किए, जहां उस दौर के बड़े बड़े सिंगर्स सिर्फ बड़े और मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम करते थे, वहीं सुमन जी का दिल बड़ा था। अगर कोई नया या गरीब प्रोड्यूसर उनके पास आता और कहते कि उनके पास पैसा कम है, तो सुमन जी बिना पैसा के भी गाना गा देती थी। सुमन जी को फिल्मी दुनिया की चमक धमक से दूर रहना पसंद था। उन्होंने बहुत कम इंटरव्यूज दिया और ना ही कभी किसी के बुरा कहा। जब उन्होंने गाना छोड़ा तो वो अपना पूरा वक्त अपनी बेटी अलका और बाकी परिवार के साथ बिताती थी। सुमन जी कहती थी कि सुकून बाजार में बिकने वाली चीज नहीं, ये आपके अंदर होना है। सुमन कल्याणपुर जी की नेखन तख्त साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गई। उनकी बेमिसाल आवाज़ हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगी।

अभी आपने फिल्मी दुनिया सुना, जिसमें हमने महान मारू शख्स सुमन कल्याणपुर जी के बारे में बयान किया। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए सुनवाते हैं मन्ना देश साहिब से ये गीत।

दिल छू लेने वाले गीत पेश था। मन्ना डे की आवाज और खुद उन्हीं की मौसिकी थी, कलाम था मधुकर राजस्थानी का। अब आइए सुने महेंद्र कपूर और आशा भोसले से ये दो गाना।

खूबसूरत अंदाज में पेश था ये दो गाना। रवि की सजाया संगीत था बोल हसन कमाल का। अब आइए सुने गीता दत्त और हेमंत कुमार की आवाजों में ये दो गाना।

मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। किशोर कुमार से आपने अभी ये गीत सुना। संगीत देने वाले थे संगीतकार राहुल देव बर्मन, गीतकार थे शायर गुलजार। कोई उस शख्स सा दुनिया में कहाँ होता है, लाख चेहरों में जिसे दिल ने चुना होता है। हम उस मोड़ पे आ पहुँचे हैं मोहब्बत में, जब जब वो मेरी जिंदगी में बहार बन के आए।

खूबसूरत अंदाज में पेश था ये नगमा आवाज थी अलका याग्निक की। छुपा लेते हैं जो हर गम को अपने मुस्कुराहट में, वो अक्सर टूट जाते हैं अकेले तन्हाई की हालात में। छुपाते हैं दर्द दिल दुनिया की नजरों से इस तरह जैसे कोई आग दबा लेता है अपने सीने में।

0: कमाल का नगमा आपने अभी स्वर की मालिका लता मंगेशकर की आवाज़ में सुना। मौसिकार खयाम की मौसिकी थी, कलाम था शायर नक्श लियालपुरी का। जिंदगी जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हो तो एक असूल बना लो, जो खोया उसका गम नहीं और जो पाया वो किसी से कम नहीं, जो नहीं मिला वो एक ख्वाब है और जो मिला वो लाजवाब है। इसमें मनदी क्या सुनाने को जा रहे हैं, मीठी आवाज में लीजिए पेश है।
1: सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूँ और गाने में ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात,

हाँ, भरकता गीत आपने अभी मनदे साहब से सुना। अगला नगमा पेश है, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी साहब की।

रोमानियत अंदाज में पेश था ये नगमा। मौसिकार रवि की मौसिकी थी, कलाम था शायर शकील बदायूनी का। इसी अंदाज में पेश है अगला नगमा एक बार फिर मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में।

0: दिल छू लेने वाले नहमा पेश था, मौसिकार खयाम की मौसिकी थी, कलाम था शायर कैफी अजमी का। और ये नगमा में चार चांद लगाने वाली आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी साहब की। अगला नगमा पेश है मुकेश जी की मधुर आवाज़ में।
1: जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन

0: अमर गीत पेश था संगीतकार सलील चौधरी का संगीत रचना, गीत रचना था जुगेश का। अब आशा भोसले का सुनाने को जा रही है, लीजिए पेश है।
1: बॉय बॉय बॉय बॉय

अभी आपने आशा भोसले की आवाज में ये गीत सुना, आशा जी जिसकी आवाज में नजाकत थी, लचक और शोखीपन थी। अब आइए सुने लता मंगेशकर से अगला गीत।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं। उजाला रेडियो के जरिए आप सुनने वालों को हर तरह का प्रोग्राम सुनने को मिलते हैं, जैसे कि देश विदेश का समाचार, नए से नए गीत संगीत और सुनहरी दौर के भूले बिसरे गाने भी सुनने को मिलते हैं। बदलते वक्त के साथ जो अपना रंग दिखाते हैं, मतलब निकलते ही पल भर में भूल जाते हैं, खुदी में इतने डूबे हैं ये खुदगर्ज इंसान के औरों के दर्द को बस एक तमाशा बनाते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए।

संगीतकार उषा खन्ना का सजाया संगीत था और शायर जावेद ने दिल की कलम से ये तर्श को लिखे थे। मोहब्बत मोहब्बत अधूरी रह गई, ख्वाब अधूरे रह गए, होंठ हंसे मगर दिल की जख्म गहरे रह गए। वक्त ने सिखाया हंस के जीना, मगर क्या करे, यादों की सहारे ही हम ठहरे रह गए।

और इस गीत के साथ आज का प्रोग्राम सबरंग हम खत्म करते हैं। प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी सुनने वालों को तहल दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़, नमस्कार। खादिमा थी निशा।

खुशी के साथ गमी है पैदाइश के साथ माल उजाला रेडियो के जरिए सुन वालों मृत्यु समाचार सुनने के लिए आप ध्यान दीजिए। अलमीर स्टाद के रहने वाले समस्त परिवार मुन्नीलाल बहादुर के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते 26 तारीख सितंबर को जातदग 26 सितंबर को 69 साल की आयु में इन लेफ्टाइट फान 69 jaar verzorgingstehuis Kiekendief Almere Stad में। अलमीर स्टाद के रहने वाले स्वर्गीय पिता अलम प्रसाद मुन्नीलाल स्वर्गीय माता सुखिया जुगन के बेटा बहन स्टेला शिव सहाय मुन्नीलाल के भाई बहनोई सुरेन शिव सहाय के सार अमृत और जयंती के मामू वर्षा बैजनाथ मिसीर और वाहिद निजाती के मामुआ ससुर दो लड़कन के नाना अलमीर स्टाद कोलकप्लैन के रहने वाला श्रीमान राजेंद्र प्रसाद मुन्नीलाल का देहांत हो गया है जिन्हें लोग ज्यादा राजन और चली के नाम से जानते थे। इनका देहांत हो गया है फर्सोर्गिंगस्टहाउस कीकंदीव अलमीर स्टाद में। अलमीर स्टाद से समस्त परिवार मुन्नीलाल बहादुर के साथ ये सूचना को करें हैं कि बीते 26 तारीख सितंबर को जातदग 26 सितंबर को 69 साल की आयु में इन लेफ्टाइट फान 69 jaar verzorgingstehuis Kiekendief Almere Stad में स्वर्गीय पिता अलम प्रसाद मुन्नीलाल और स्वर्गीय माता सुखिया जुगन के बेटा बहन स्टेला शिव सहाय मुन्नीलाल के भाई बहनोई सुरेन शिव सहाय के सार अमृत और जयंती के मामू वर्षा बैजनाथ मिसीर और वाहिद नजाती के मामुआ ससुर दो लड़कन के नाना अलमीर स्टाद कोलकप्लैन के रहने वाला श्रीमान राजेंद्र प्रसाद मुन्नीलाल का देहांत हो गया है जिन लोग ज्यादा राजन और चली के नाम से जानते थे। इनका देहांत हुआ है फर्सोर्गिंगस्टहुइस कीकंदीव ते अलमीर स्टाद सूरीनाम जिसमें निकेरी बोनाकर पोल नंबर 12 के जो रहने वाला था। अर्थी से आखिरी मौका है विदा लेने के लिए आने वाले बृहस्पतिवार आनस्तान डोनदग 1 अक्टूबर ओस्टरद्रेव 15:15 अलमीर में और अभी शाम के वक्त 5 से लेकर 6 बजे तक दाहक्रिया को किया जाएगा। Uitvaart, ja, crematie is aanstaande vrijdag, Annabelle Sukruwaar, Dotarik, Oktoberko, 2 Oktoberko, vanaf 1:30. Begraafplaats, crematorium Westgaarde, ook meer weg, Doosoppetjes ter Amsterdam, Opsdorme. Samas Bariwaar, Jan, bij het aanzien in Widenheim, is Gabriko Aur, Doortek, Bahoutjaad in Kleem. Ujala Radio, Samas Bariwaar, Munilal Ke Dugme, Shamil He, Jahatek Abnesunheim, Ujala Radio Gezerepeesh Kiagahe, Meritus Machar.

दमादम मस्त कलंदर ओ लाल मेरी पट अभी आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए। सुनने वाला आने वाली 1 तारीख नवंबर को उजाला से दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स होने वाला है। वक्त पर अपना टिकट खरीद लेना। मित्र आविष्कार ऑर्केस्ट्रा के साथ संजय जोधा रहेगा। संजय जोधा के अलावा है वो नतुलक इंद्रनील रॉय मौसमी रॉय रविंद्र सिंह बेदी 1 नवंबर और फनफ हाफ 3 से सबसे पहले दिवाली फकल ऑप्टोक किया जाएगा एंड कॉन्सर्ट शुरू होने वाला है रोंट 4:15 और दिवाली फकल ऑप्टोक में आप मूव में ग्रेटिस में तो के मिलेगा फकल्स एंड ग्रेटिस डेलनामे नतुरलिक स्टार्ट एंड एंडपॉइंट मेरवाट से है। Bestel je kaarten voor het concert via meervaart.nl vanaf €15. Wacht bij Gerrit Lena.

कसमें जो खाई तूने सब धुआं बन के उड़ गई। आज रास्ता मोड़ कर तू गैरों की बाहों में मुड़ गई।

नाराज नहीं जिंदगी। और उस गाने को छोड़कर हम आपको ये नफा सुनाने को जा रहे हैं नुमर खसोंग दौर अलका याग्निक एंड विनोद रसोत। एक फिल्म है, फिल्म का नाम है चाहत, जिसमें काम किए हैं शाहरुख खान एंड पूजा भट्ट। पूजा भट्ट या पूजा भट्ट अशोक लांगलेद हैं तो हार खसीन है। मैं ये फिल्मों में काम करे शाहरुख खान एंड पूजा भट्ट और विनोद रथोत अलका याग्निक के गाना है। और गाने का बोल है चाहत ना होती।

0: आप देख ले है? अब बोले हम तो पूजा करी ला
1: देखा करेंगे झूठा।
0: अब तेरे दिल में हम आ गए सुनो लो। नहीं नहीं नहीं नहीं एक बार नहीं फलीफ सर। नहीं नहीं नहीं हम खानी राय दिला फॉर दी मन दी फलीफ सैन गवर्नर ऑफ इमत लोक फिंदर हो ये क

Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Tujana het allemaal. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

सोनू निगम और अलका याग्निक, इन दोनों से आप गीत को सुने। फिल्म का नाम रेफ्यूजी। उजाला रेडियो पर इसी फिल्म से इन्हीं दोनों की आवाजों में एक और गीत पेश है।

मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे पास आ। अलका याग्निक एंड सोनू निगम, इन दोनों से गीत को आप सुने।

अंतिम संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल ना info@ujala.net info@ujala.net

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozone Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

तेरा चेहरा जब नजर आए, अरिजीत सिंह की आवाज और फिल्म का नाम सनम तेरी कसम। आपके साथ साथ और हजारों लोग सुन रहे हैं उजाला रेडियो को।

तुम्हारी आरजू के पलकों में कोई पलता है, तुम्हारी आरजू के साये में हाँ कोई पलता है। मोहित चौहान की आवाज में गीत को आप सुने, श्वेता पंडित हिस्सा लेंगे। इट्स यू आर रोजाला रेडियो टू।

अरिजीत सिंह। हाँ, अरिजीत सिंह द जुनून बैंड के साथ, और ये उजाला रेडियो है, उजाला पेंटेनल, इंफॉर्मेशन के लिए।

0: En inderdaad.
1: Watch this.
0: फिल्म आराधना का गीत फिर से सजाए गए एकदम से रीस्टाइल बाय शान एंड स्टाइल भाई उजाला रेडियो है ये निखावत शेखन मैं सुनिधि चौहान एंड हाजी स्प्रिंगर

Shake It Senya, suni di Chauhan Haji Springwear from Rascals. Ujala.nl हम लोगों का वेबसाइट है. फॉर इंफॉर्मेशन तू जाने है तो

प्यार का ये रंगीन जमाना याद रहेगा। उमर कैद फिल्म का नाम और आप गीत को सुने मुकेश जी एंड लता जी से। ये उजाला रेडियो है।

और इतना है तुमसे प्यार मुझे, फिल्म सूरज का गीत और गाने वाले मोहम्मद रफी के साथ में सुमन कल्याणपुर।

बन के साथी प्यार की राहों में हमसे कभी तुम ना जुदा होना। गीत आप सुने मोहम्मद रफी अंदर लता जी से, फिल्म स्वीटहार्ट से, और ये उजाला रेडियो है। एक और गीत आप सुनेंगे अब, आशा जी की आवाज में होंगे।

बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। गीत आप सुने तलत महमूद की आवाज में, फिल्म का नाम कैप्टन किशोर और ये उजाला रेडियो है।

ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में और सागर मिले कौन सी जल में, ये कोई जाने ना। गीत आप सुने मुकेश जी की आवाज में और फिल्म अनोखी रात से निकाले गए।

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने है तो उजाला रेडियो, उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए। उजाला इस वन हेल नीलम, तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए। उजाला पेश करे हैं उजाला दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स जोमदा 1 नवंबर इन मेरवाड मैट संजय जोधा मौसमी रॉय इंद्रनी रॉय रविंद्र सिंह बेदी एंड म्यूजिकल बखलाई नहीं है सहान वाम

0: पुरानी यादों के साथ और सुरीले गीतों के संग बनता है उजाला रेडियो का कार्यक्रम।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

लौट के आने के इस दिल में आस जगा के जाना, या फिर जाते जाते मुझको आग लगा के जाना।

मुझसे मिलना फूलों की तरह, मुझसे मिलना फूलों की तरह और बिछड़ना खुशबू की तरह। ये उजाला रेडियो है और इसी के साथ आरंभ किया जा रहा है प्रोग्राम दर्द दियो, दर्द भरी गीतों के साथ। इस प्रोग्राम में हम वो गीतों आपको सुनाते हैं जो कि सुन करके कभी दिल को आराम मिलता है और कभी दिल का दर्द और बढ़ जाता है। कुछ भी हो, कैसा भी हो, हम प्रोग्राम आप ही के लिए बना रहे हैं। उम्मीद करते हुए कि आप सुन करके और पसंद करोगे। तो चलिए आज का प्रोग्राम में पहला गीत पेश है।

जो प्यार है किसी और का, तुम्हें चाहता कोई और है। अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू, इन दोनों की आवाजों में आप सुने 1991 के फिल्म, और फिल्म का नाम दिल है कि मानता नहीं। इसमें संगीत से सजाइए इस गीत को नदीम श्रवण, और इस फिल्म में काम किए पूजा भट्ट के साथ आमिर खान।

तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, या खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ। मुकेश जी की आवाज़, फिल्म हरियाली और रास्ता 1962 नेहुंतिन त्वेयन जस्तक के फिल्म में म्यूजिक कंपोजर शंकर जय किशन और इस फिल्म में उन दिनों काम किए मनोज कुमार के साथ माला सिन्हा जी। उजाला रेडियो है ये और प्रोग्राम का नाम है दर्द-ए-दिल।

मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गीत आप सुने। फिल्म का नाम दो बदन 1966 नेखंतिन जैसन जस्तख की फिल्म और संगीतकार थे रवि और इस फिल्म में काम किए मनोज कुमार के साथ आशा पारेख।

सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। द मैन विद द गोल्डन वॉइस, तलत महमूद की आवाज में आप सुने 1957 1957 तक की फिल्म एक साल में पेश आई गीत और रवि संगीत से सजाए। और इस फिल्म में काम किए अशोक कुमार के साथ मधुबाला। उजाला रेडियो है ये प्रोग्राम दर्द दिलो।

लता जी की आवाज 1971 निखंतिन एनन जेफन तक के फिल्म उपहार से निकाला हुआ और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और इस फिल्म में काम किए उन दिनों जया भादुरी के साथ कामिनी

बड़ा दान वो है जो जीवन से हारे, एक अंधेरा लाख सितारे। मोहम्मद अजीज़, हाँ मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में आप सुने 1985 नई खंतिन फैफन तख्त के फिल्म आखिर क्यों से निकाला हुआ। राजेश रोशन संगीतकार थे और फिल्म में काम किए राजेश खन्ना के साथ स्मिता पटेल। उजाला रेडियो है ये, प्रोग्राम का नाम दर्द दिल, दर्द भरे गीतों के साथ।

देने वाले सुन, गम की दुनिया से दिल भर गया। द मैन विद द गोल्डन वॉइस, तलत महमूद की आवाज में आप सुने 1953 इकतीन फाइव तक की फिल्म दिले नादान से, और गुलाम मोहम्मद संगीत से सजाए, और इस फिल्म में खुद तलत महमूद काम किए है श्यामा के साथ उन दिनों।

लता जी की आवाज में गीत आप सुने 1967 नई खंतिन जीफन जस्त के फिल्म मिलन से निकाला हुआ और इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर्स लक्ष्मीकांत प्यारे लाल और फिल्म में काम किए सुनील दत्त के साथ नूतन जी। उजाला रेडियो है ये प्रोग्राम दर्द दिल।

जो प्यार तूने मुझको दिया था वो प्यार मैं तुझे लौटा रहा हूँ। और हाँ, मुकेश जी की आवाज में इस गीत को आप सुने 1964 नीखंतिन फिरन जस्त की फिल्म दुल्हा दुल्हन से। और देखा जाए तो हाँ, काम किए इस फिल्म में राज कपूर के साथ साधना। एक बार फिर लता जी, दर्द दिल में।

देख लिया, अब आग में जलकर भी देखेंगे। आवाज लता मंगेशकर की, हेमंत कुमार म्यूजिक कंपोजर। फिल्म 1954 निकंतिन फिरन फैफ्तक के फिल्म नागन से निकाला हुआ और काम किए प्रदीप कुमार के साथ विजयंती माला।

उजाला रेडियो वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेयर इन्फॉर्मेशन ऑफ उजाला बिंदनेल उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारियोर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ।

0: मुझे कसम है जहाँ कहूँ
1: लो यारो कस्टम बस्टम कचर बस्टर सबको गोली मारो। दिल वालों के इस मेले में मौज मना लो यारो कस्टम बस्टम कचर बस्टर सबको गोली मारो। मुक्त मिले जब दिल की बुटिया फिर सदमे को झेलो मजा ले लो।

नाना नानी, दादा दादी, काका काकी, मामा मामी, फुआ फुफा, बहन और ए भाई, तो भी सुने है तो उजाला रेडियो।